राशि दिलक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026

जून महीने की 30 तारीख व दिन है मंगलवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगे छोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हम सिरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास, मनपा उद्घोषक श्री कुंचो संगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन धामू। आकाशवाणी तावंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:02 हैं। श्रोताओं अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in the World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. In another match, Morocco defeated the Netherlands 3-2 on the penalties after a dramatic 1-1 draw across 120 minutes in round of 32 clash today. Morocco's Ashraf Hakimi and Neil El Anoui tested Dutch goalkeeper Bart Verbruggen, while Mickey van der Ven forced a world-class save from Moroccan keeper Yassine Bounou. Cody Gakpo scored a brilliant opening goal for the Netherlands after receiving a quick pass from Crescencio Somerville. After a chaotic penalty shootout featuring misses from Quinton Timber and Ashraf Hakimi, Ismail Saibari scored a decisive spot kick to send Morocco through. Earlier, Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News, Delhi.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, issued an orange-coloured warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, sub-Himalayan West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इनकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक ने सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
2: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रति

0: कार्ड वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें, अत्यधिक केमिकल

0: फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक

0: में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के तहत आज सुनिए महाबोधि स्कूल तेली तवांग के बच्चों से पाली भाषा में बौद्ध वंदना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महाबोधि स्कूल तेली तवांग के बच्चों से पाली भाषा में बहुत भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजने वाले हैं। श्रोताओं, चलिए अब आनंद लेते हैं विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का, जिसके तहत आज पेश है भूपेन हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक असमिया गीत।

विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं। भूपेन हजारिका की आवाज में चंद आधुनिक असमिया गीतों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया भूपेन हजारिका की आवाज में चंद आधुनिक असमिया गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्रा यीशी वंगो से छात्रों के जीवन में ध्यान का महत्व विषय पर उनके विचार।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी यीशी वांगमू, पीएम श्री जेएनवी तवांग में 11वीं मानवी कक्षा में पढ़ती हूं। आज के कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है छात्रों के जीवन में दयान का महत्व। आज मैं आप सभी के सामने छात्रों के जीवन में दयान का महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्कूल का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। परीक्षा, प्रोजेक्ट, दोस्ती और भविष्य की चिंता, यह सब मिलकर छात्रों पर मानसिक और शारीरिक दबाव डालते हैं। दयान से हमारा मन शांत रहता है, इसे चीजें जल्दी याद होती है और पढ़ाई पर अच्छे से मन लगा पाते हैं तथा सोचने की शक्ति बढ़ती है और निर्णय बेहतर होते हैं। मेडिटेशन से रक्षणता बढ़ती है और हम मानसिक परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। प्रतिदिन दयान करने वाला छात्र असफलता से नहीं डरता और वे दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। रोज सुबह पढ़ाई के बीच 3 मिनट मेडिटेशन करने से एकाग्रता तथा स्वस्थ बढ़ती है तथा मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि आप अपने जीवन को सुशीलता और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। शांति बाहर नहीं भीतर होती है, शांति बाहर नहीं भीतर होती है, मेडिटेशन ही इसकी चाबी है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्रा यीशी वंगमू से छात्रों के जीवन में ध्यान का महत्व विषय पर उनके विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:32 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता हो।

0: एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ
0: एडमिशन कराने? आता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो चलिए अब शुरू करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी के आवाजों में। गीत के बोल है कौशल मुनीर के और संगीत अमित त्रिवेदी।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का दूसरा नगमा प्रस्तुत है जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है गुलजार ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चक दे इंडिया फिल्म से हिमा सरदेसाई की आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। लीजिए कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा पेश है दिल धड़कने दो फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लोई।

श्रोताओं, इन्हीं फिल्मी नगमों के साथ महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले सुनिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, चलिए अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी को। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला नगमा, सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बख्शी के आवाज में। इस गीत के बोल है रश्मि विराग के और संगीत तनिष्क बख्शी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का दूसरा नगमा लीजिए प्रस्तुत है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से विशाल ददलानी, पायल देव, किशोर कुमार और मरियम के आवाजों में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने और अमिता दत्त ने, तथा संगीत से सवारा है आर डी बर्मन और विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया नोटबुक फिल्म से कमाल खान की आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है कौशल किशोर ने और संगीत से सवारा है विशाल मिश्रा ने। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे रचा है कुमार ने और संगीत से सवारा है रोचक कोहली ने। यह गीत हमने चुना है सत्यमेव जयते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार के आवाजों में।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के आवाजों में। गीतकार है कुमार और संगीतकार है

श्रोताओं, अगले मुद्दे का आनंद लीजिए। जुग जुग जियो फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में, बोल शास्त्री और संगीतकार है कनिष्क सेठ।

श्रोताओं, ये था टू स्टेट्स फिल्म से एक गीत अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में, जिसे शब्दों में पिरोया है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोय ने। लीजिए, कार्यक्रम का अगला नगमा प्रस्तुत है भूत वन फिल्म से अखिल सचदेव और मशील गुजराल के आवाजों में। इस गीत के बोल तथा संगीत है अखिल सचदेव के।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा प्रस्तुत है। ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल, शिफाली अलवरेज की आवाजों में। इस गीत को रचा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इन्हीं नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए पंडित उल्लास पपट से संतूर वादन का। राग है मारू बिहाग। तबले पर संगत दे रहे हैं पंडित वैभव नागेशकर तथा तनपुरे पर मदन भोंगले और केतका बापट।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे पंडित उल्लास पपत से संतूर वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत चल रही प्रक्रिया में बूथ स्तर अधिकारियों का सक्रिय सहयोग करें। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला बाल एवं किशोर श्रम टास्क फोर्स ने आलो टाउनशिप में 3 दिवसीय सघन बाल श्रम निरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न की। NSCM के निकिसुमी गुट के 2 उग्रवादियों ने खेती क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान स्वेच्छा से असम राइफल्स और तिरा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ईरान के दोहा में बैठक से इनकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार कर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए UPI सेवा शुरू की है। यह पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने UPI की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं।
0: अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिला निर्वाचन अधिकारी लोबसांग शेरिंग ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत चल रही प्रक्रिया में बूथ स्तर अधिकारियों BLO का सक्रिय सहयोग करें ताकि स्वच्छ सटीक और त्रुटिहीन निर्वाचन नामांकवली तैयार की जा सके। ये अपील जिले में घर घर जाकर किए जा रहे सत्यापन और गणना पत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र करने की प्रक्रिया के दौरान BLO को आ रही विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर की गई है। नाबालिग बच्चों की पहचान कर में बाल श्रम से मुक्त करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला बाल एवं किशोर श्रम टास्क फोर्स ने आलो टाउनशिप में 3 दिवसीय सघन बाल श्रम निरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न की। यह संयुक्त अभियान राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किए गए अखिल भारतीय बचाव एवं पुनर्वास अभियान 4.0 के तहत चलाया गया। निरीक्षण अभियान का नेतृत्व जिला श्रम अधिकारी असिम परतन द्वारा किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिसकर्मी तथा अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी और मदर्स विजन की जमीन स्तर के सामुदायिक सदस्यों ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी की। NSCM के निकिसुमी गुट के 2 उग्रवादियों ने खेती क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान स्वेच्छा से असम राइफल्स और तिरा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह अभियान खोंसा बटालियन असम राइफल्स के नेतृत्व में क्षेत्र उग्रवादियों की मौजूदगी संबंध विशेष खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया था। अभियान के दौरान दोनों उग्रवादियों ने अपने हथियार डालकर सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों और बरामद सामानों को आगे की कार्रवाई औपचारिकताओं तथा उग्रवादी के लिए सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए खोंसा पुलिस को सौंप दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा है कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधनों दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस IBLS के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण।

0: आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष जून 30 तक निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। भारत में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन के ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र में अंतरोधि सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाले अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ।
1: भारत में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और अस्पतालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को सख्ती किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार और देश के नागरिकों से अटूट विश्वास से मिलता है। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यवस्थात्मकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी।
3: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। यूएन डिप्लॉयमेंट और प्राकृतिक आपदा सहायता में अपने उत्कृष्ट कार्यों से समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहराया है। चाहे वह कांगो के घने जंगल हो या वेनेजुएला की भूकंप ग्रस्त भूमि, उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती मजबूती और सतर्कता से रही। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए एक मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया है। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। एक अन्य मुकाबले में पैराग्वे ने जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। निर्धारित और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जीत दर्ज की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा है कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती है और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि

ga ka sinjin jam Draupadi Murmu sha phepsu jusumbur utkap ka leader lhangge mapning ponga lhangge mapsi nyumju longnangumbur ui jingle ledon lonchin kushap Shivraj Singh Chauhan si nangdanga jingle chit yarke magai sak kyagar gekhap yarke namdanu gekhap ti shung mateyukimbur ngade Haryana kak hisar jongde ka kochugo leng chani yayuk खेत बचाओ अभियान छर्षिक देश शुक्ति चेगो का कुशब शिवराज सिंह चौहान सी नंगदंगा वीजुंग सी मोबाइल ऐप थी चयुक्त होकर चाले नंगदंग नंबर उत ऐप चुकी लिंक सगाया नव हिनम एचिक ऑटो शिविन कोई तुन थंगो सु हिनम कोर निश्चय बेयु किंबर पेनंग सी सेजिंग बुबाशा लिंगा मान्योर मोथोंगु सेजिंग यागिंग्स नंगंबर Sapungda Mamik Chikyap General Upendra Dwivedi Si Nangdanga Gyagark Sunkyap Mami Pasha Shuchit Mithik Lak Minu Uch

これ。どこにもましゃるの。

0: 젖은 허둥.
1: 어, 그래.
0: 젖은 젖은 젖은 허둥.
1: 어, 그래.
0: 다동어, 난이, 다지, 해쇼. 달지 해줘. 머리에 쉐보다 강승.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज

की शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुम लेरिम के तहत सुनिए गिलुंग जंपा वांचू और साथियों से जुड़वा चुरुक का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत सुनिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रिमिधन के दूसरी कक्षा के छात्रा तंजिन घटुन से अंग्रेजी भाषा की एक कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के तहत आनंद लीजिए साजन फिल्म से चंदन निगमों का आज शाम 7:11 पर। आज शाम 7:25 पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। आज रात्रि 8:00 आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आज शामिल है आपकी कसम, खानदान, लाल दुपट्टा मलमल का, पुकार और अमर प्रेम फिल्मों से चंद नगमे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन आज रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 1 जुलाई 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए देवशीष दास गुप्ता से चंद हिंदी भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए चंद आधुनिक असमीय गीतों का मयूख हजारिका के आवास में कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए पीएम श्री जेएनवी तावंग के 11वीं कक्षा के छात्रा कर्मा ड्रोमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर उनके विचार।

महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत के तहत सुनिए। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन, राबता फिल्म से अतीफ असलम, गुड बाय फिल्म से अमित त्रिवेदी, ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव, रॉय फिल्म से मीत ब्रदर्स अंजान और कनिका कपूर की आवाजों में चंद नगमे कल दोपहर तीन बजकर पचास मिनट पर आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के गीत के कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत पाठशाला फिल्म से सलीम मर्चेंट, दावत इश्क फिल्म से शालमली खोलगरे, बाग मिल्का बाग फिल्म से जावेद बशीर, आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहपत्रा, बे की बात फिल्म से विशाल ददलानी और अलीसा मंडोनका, बॉडीगार्ड फिल्म से एशकिंग और क्लिंटन सेरियो, यारियां फिल्म से अरिजीत सिंह, फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा तथा रंजना फिल्म से जावेद अली

सगाथिया और पूजा एवी की आवाजों में आनंद लीजिए चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 दैनिक कार्यक्रम नमधर के तहत सुनिए परम पावन तुलकु तंजिन योमे रिम्पोचे द्वारा अनुवादित एवं प्रस्तुत प्रसिद्ध भारतीय आचार्य शांतिदेव द्वारा रचित अ गाइड टू बोधिसत्वास वे ऑफ लाइफ रचना पर आधारित शिक्षाओं की श्रृंखला। दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में श्री लुपसंग तोप्तिन से कल शाम 5:30 पर। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मुनपा कार्यक्रम नंगचोई कलोप लेलिमसिरा कल शाम 6:00। शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदम लेरिम के तहत सुनिए गेलम जंपा वंचू और साथियों से जोरवा चुरुक का शेष भाग तथा अनी सिटम संगमो और अनी यंचन हमो से क्यावे शब्दन खिन रिमुचक शब्दन और यूनिक मुनलम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम कोमे तराने के तहत आनंद लीजिए लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। कल रात्रि 8:00 आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन कल रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जनों का यही समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:18 हुए हैं। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम आप सुन पाएंगे 6:20 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

उच आकाशवाणी तवांग इंबर लांगे छाम मुनुप्तिक छ जग रोफनी कर्म खेलि होनी लांगे ना दा देशिक शेदन लेरिम चित को सुदुर लांगे ना देशुच लेरिमा केलोंग चंपा वांचु श्री क्रिस्तोनु चरवा चुडुक तंग शेदन लेरिमा सनमेजिक थोर ता मुथुई सन्नांसा

계산 지나지 말진 배야 조명산 예능 거절자 선별인 제세상 양한 배 주랑은 예만나 잔잔 결제 몰랑고

Lama Zon La Zon Wan, Tinje Lama Zon La Zon Wan,

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज बड़ोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के

0: समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वीं सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:11 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए साजन फिल्म से चंद नगमों का। तो लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से कार्यक्रम का पहला नगमा, अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम के आवाजों में। गीत के बोल है समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

जी एक कार्यक्रम का अगला नगमा प्रस्तुत है इसी फिल्म से एस पी बाला सुब्रमण्यम के आवास में। गीत को रचा है समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, साजन फिल्म के इन्हीं नगमों के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग के तहत आज सुनिए शास्त्री लोपसंग तेंजियाल से मुन क्षेत्र और तिब्बत के ऐतिहासिक संबंध एवं तवांग मठ के महत्व पर एक वक्तव्य।
1: आज मैं मन क्षेत्र के साथ तिब्बत का ऐतिहासिक संबंध क्या रहा है और खासकर तवांग की स्थापना के बाद मन क्षेत्र के लोगों के लिए क्या लाभ हुआ है, इस विषय में मुझे बात करने का आदेश हुआ है। और अगर मन क्षेत्र के तिब्बत के साथ में सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संबंध क्या है तो बहुत गहरा संबंध रहा है। अगर मैं कहूं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे या धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे या सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, किसी प्रकार से भी हम देखेंगे, किसी भी दिशा से हम देखेंगे, तो हमारा हमेशा से जो है मन क्षेत्र जो है तिब्बत का बहुत गहरा संबंध रहा है। अगर तिब्बत को पिता कहा जाएंगे तो हम पुत्र के रूप में होगा।

अगर हम तिब्बत को गुरु के दर्जे देंगे तो हम शिष्य होंगे, तो फिर बौद्ध गहरा है राजनीतिक दृष्टिकोण से आकर कहा जाएंगे तो तिब्बत के 33वां महाराज सम्राट सोंगजंग गुम्बू से लेकर के 1914 शिमला कन्वेंशन जो हुआ था, संधि जो हुई थी, तब एक रेखा खींची गई थी तिब्बत सरकार और ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। उसके बाद जो है हम तिब्बत से अलग होकर के भारत में आकर के जुड़ गए। उससे पहले हम तिब्बत के हिस्से में आते थे और महाराज सोंगजंग गुम्बू के समय में मन क्षेत्र जो है तिब्बत के हिस्से होने का प्रमाण ये है कि महाराज सोंगजंग गुम्बू ने मन क्षेत्र के जहाँ से सीमा शुरू होती थी उस समय में लेबोसोजी उसको कहते थे, सोना जोंग के आसपास वो पढ़ते हैं शायद, तो वहां पर एक मंदिर बनाया था सम्राट सोंगजंग गुम्बू के द्वारा। उस मंदिर के अंदर में सम्राट स्वयं की मूर्ति और चीन की महारानी कोंगजो और नेपाल की महारानी तीनों की मूर्ति जो वहां पर स्थापित है, और कहा जाता है कि 1959 तक तत्कालीन तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि आकर के वहां पे वार्षिक पूजा करते थे। तो ये महाराज सोंगजंग गुम्बू के समय में हमारा मन क्षेत्र जो था तिब्बत के हिस्से में थे। और इसके बाद जो है सम्राट सोंगजंग गुम्बू के 5वां वंश छगे टिसों देवजन, उनके 3 राजकुमार हुए थे। उनमें से सबसे बड़े राजकुमार जो था वो आगे चल करके महाराज बना तिब्बत के, उनका नाम सेना लेगजिन। उनके भी 3 राजकुमार हुए, लासे संगमा, लंगदरमा और ठिर बचन। तो फिर लंगदरमा ने राज सियासत के चलते राजगद्दी के लोभ को लेकर के वो महाराज बनना चाहता था, जबकि वह न बन सका था, तो उन्होंने षड्यंत्र रच करके महाराज श्रीरवचन की हत्या कर दी और उनके महाराज बनने के मार्ग में बाधा ना बने इसलिए हसे संगमा को मन क्षेत्र में तरीपार कर दिया। तरीपार मनी उनको वहां से निकाल दिया गया, षड्यंत्र उसका, वह निर्दोष थे फिर भी वहां पर भेज दिया। और जो है हसे संगमा जो महाराज सोंगजंग गुम्बू और कहा जाता कि चक्रवर्ती राजा जो सबसे पहले इस विश्व का राजा बना था उनका वंशज है, तो लासे संगमा के आगमन यहाँ पर होते हैं 8 या 9 सेंचुरी में। तो उनके आने के बाद जो है हमारे यहाँ के वंशज जो है तिब्बती राज के वंशज बने, हमारे यहाँ पे जितने भी राजा बने सब तिब्बत के आए हुए जो लासे संगमा था उनके वंशज बने। और कहा जाता है कि कलावांगबो उससे पहले हुआ था या उसके आसपास सोंगजंग गुम्बू के सामने, कोई कहता है कि बाद में हुआ था और कोई कहता है कि 7th सेंचुरी में हुआ, अगर 7th सेंचुरी में हुआ हो तो फिर सोंगजंग गुम्बू के समय में है। तो अगर उसमें भी अगर हमारे क्या कलावांगबो अगर हमारे कोई अलग महाराज था तो मैं मानता हूँ कि उस समय में जरूर हम तिब्बत के उपराष्ट्र के तौर पर होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे राजवंश जो है मन क्षेत्र के राजवंश जो है मन में इस तरह से फैला। और कहा जाता है कि महाराज लासे संगमा के आगमन के साथ में बहुत सारे तिब्बती जो है यहाँ पे आ गए थे, उनसे पहले भी 6 जो है यहाँ पे तिब्बत के लोग यहाँ पे आए थे। तो वो सब तिब्बती जो है वहां से आने के बाद मन क्षेत्र में बस करके हमारा मन आबादी जो है हमारी प्रजा जो है फैलने लगा है। तो फिर राजनीतिक मैं इसलिए कर रहा था राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम बहुत अटूट संबंध रहा है हम लोगों का। और कहूंगा कि अगर दूसरा जो है धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो भी हम जो है हमेशा से तिब्बत का ही शिष्य रहा है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म का उदय जो है 7th सेंचुरी में केवल कवलंकोंपो के द्वारा डाकिनी खंड डोंगसामा के द्वारा हुआ था। इसके बाद जो है क्रम से आचार्य पद्मसंभव जो भारत से तिब्बत गए थे उस समय भी यहाँ से होकर के गए थे, तो उनके द्वारा भी हमारे यहाँ पे धर्म का उदय हुआ था। इसके बाद जो हमारे यहाँ आते हैं तेरजुन पेमा लिंगबा जो तिब्बत के थे, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष थे तेदिन पुरपन लिंगबा, और उनका छोटा भाई लामा उड़गेन सांबो जिसके द्वारा उड़गीलिंग मनस्त्री का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि स्वगीलिंग संगीलिंग 3 उन्होंने मठों का निर्माण किया था, लेकिन बाद में 2 जो है स्वगीलिंग और संगीलिंग आग लग जाने के कारण जल गया या फिर धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन उड़गीलिंग गुंबा जो है आज भी हमारे साथ में है, बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही पावन जगह है, जहाँ पर 17th सेंचुरी में 1683 में सिख दलाई लामा का जन्म भी हुआ है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि तेरजुन पेमा लिंगबा से फिर वहां से पेतन पेमा लिंगबा उनके भाई जो है लामा उड़गेन सांबो। इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे 13 या 14 सदी के बीच में तंगदोन रोबोदर जी का जो बहुत महापंडित था, बहुत विद्वान था, बहुत धर्म का प्रखंड विद्वान था, उनका आगमन हुआ। तंगदोन रोबोदर जी जो था पहला दलाई लामा जे गेंदेन्दु के शिष्य थे, और तंगदोन रोबोदर जी के मन में आगमन होने के बाद उन्होंने यहाँ पे 3 केलुबा मठों का निर्माण किया। इसके बाद जो है तंगदोन रोबोदर जी उन्होंने आर्यदुन को

का निर्माण किया और गेलुगु सम्राट का उदय उस समय से होता है। इसके बाद जो उनके दो शिष्य हुए हैं बेगर जो दर्गे, बेगर जो हमारे मन का ही जो यहाँ के प्रतिनिधि करते थे, यहाँ का कोई मुख्य अधिकारी थे, जो जो हमारे राजा जो है बाद में राजा का नाम जो है राजा है, हमारे यहाँ पे जितने भी नेता थे उनका नाम जो बाद में जो से जाना चाहा, उसी तरह से बेगर जो दर्गे के दो पुत्र हुए सुम्बा और लोजांग गेसेन। तो फिर उनमें सुम्बा जो है, सुम्बा ने चंगदोन रोबे दर्जे से शर्मनेर गेसुल की दीक्षा ली और उसके बाद चंगदोन रोबे दर्जे द्वारा उन दोनों भाइयों को तिब्बत में भेजा गया। बाद में जाकर के वहां पे दूसरे दलाई लामा जे गेंदुन गेसो के शिष्य बने और उनसे पूर्ण दीक्षा ली भिक्षु की। इसके बाद फिर लौट करके यहाँ पर तीन मठों का उन्होंने भी निर्माण किया। पहला जो है लंगाटेंग गोम्बा और एक मेराग में बनाया था, मेराग गोम्बा कहा जाता, और तकदुंग गोम्बा, इन तीनों का निर्माण किया। इनके बाद जो है तिरदुन पेमा लिंगबा, जो आप सब लोगों ने उनका नाम जाना होगा, हमारे यहाँ पे मन के लामाओं में अगर हम गिनेंगे तो तिरदुन पेमा लिंगबा का नाम जरूर आते हैं। और उनके शिष्य बना लामा तेम्बे दुमे, के बाद लामा तेम्बे वेजर जो है उनका शिष्य बना और वह भी यहाँ से तिब्बत में गया और तीसरे दलाई लामा ग्यावसोनम ग्यावसो के शिष्य बना और उनसे दीक्षा लेकर के फिर वापस गांव में लौटे और यहाँ पे बौद्ध धर्म की जितनी भी मठ है उनका स्वामी बना और यहाँ का नेतृत्व किया। इसके बाद उनके शिष्य जो थे लोजांग तेम्बे ग्यासो, उनको भी तिब्बत में भेजा गया, वो जो है हमारे परम पावन दलाई लामा ह्वेनदेन ग्यासो उनके शिष्य बना। और इसके बाद जो आता है उनके शिष्य जो है मेरा लामा, जिनके माध्यम से पांचवें दलाई लामा ने तवांग मॉनेस्ट्री का निर्माण करवाया था। फिर मेरा लामा जो है लामा तेम्बे ग्यासो के शिष्य बने और तिब्बत में जाकर के पांचवा दलाई लामा, द ग्रेट फिफ्थ दलाई लामा माओ लोजांग ग्यासो, जिसकी कृपा हम लोगों के ऊपर में बहुत है, मन क्षेत्र के लोगों के ऊपर में, तो उनके शिष्य बने। उनके शिष्य बनने के बाद मेरा लामा यहाँ पर आया तो मेरा लामा को बहुत सारी परेशानियां जो है झेलनी पड़ी है। यहाँ पर मेरा लामा ठहरा गिलुकपा का लामा और यहाँ पर जो है उस समय में तिब्बत में देपासांगपा नाम का राजा हुआ करता था, जो बहुत पक्षपाती राजा था। उन्होंने कैग्युपा संप्रदाय का पक्ष ले रखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैग्युपा संप्रदाय के लोग बुरा है, कैग्युपा संप्रदाय के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के अंदर में ऐसा व्यक्ति होता है, किसी भी समाज के अंदर में भी, जो बहुत खराब होता है। तो उसी तरह से यमन केंद्र में भी थे जिनको या तो धर्म नहीं आता था, धर्म आने पर भी ठीक से पालन नहीं करता था, इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति थे। उन लोगों ने फिर यहाँ पे गेलुगपा के जितने भी मठ थे उन पर प्रभुत्व जताने की कोशिश की, जो फिर दलाई लामा को उनके बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। और इसके बाद जो है 1645 में देपासांगपा जो राजा था वहां पे, उनको जो है मंगोलियन राजा गुशीरखांग करके कोई राजा था, उन्होंने फिर उनसे क्या किया, देपासांगपा को परास्त किया। और इसके परास्त करने के बाद पूरे तिब्बत जो है शासन जो है फिफ्थ दलाई लामा के चरणों में उन्होंने अर्पण कर दिया। इसके बाद जो है तिब्बत में जो है शासन जो है सत्ता के शासन जो होता है उसका कमान जो है गेलुगपा संप्रदाय के पास में आ गया, गेलुगपा संप्रदाय के थे। इसके बाद फिर दलाई लामा जी ने यहाँ पे पहले से ही जो तिब्बत का ये इलाका था मन जो है उन्होंने आदेश दिया, सोना दिंगबन, दिंगबन यानी उस समय का शायद गवर्नर होते थे, सोना दिंगबन था, दिंगबन नामगढ़ था उसका नाम, उसके माध्यम से मेरा लामा को कहा कि हमारे मन क्षेत्र में जितनी भी तिब्बत के पार में जितनी भी जमीन है अगर उसको समझौता के साथ में बिना युद्ध के अगर आप उसमें हमारे अंदर में करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो फिर इसके बाद जो है मेरा लामा को दिंगबन ने कहा कि आप जाकर के मन में जाकर के ऐसा करो कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है उन सब समस्या का समाधान करो। तो फिर इसके बाद जो है मेरा लामा यहाँ पर आकर के फिर 1680 के आसपास की बात है ये सब। तो इसके बाद जो है मेरा लामा यहाँ के अगर यहाँ की बातों से बात करके और यहाँ के जितने भी मठ है और तवांग के पहले से सीमावर्ती प्रदेश पड़ता था उन सबको फिर तिब्बत के नीचे में लाया गया। लाने के बाद फिर मेरा लामा दिंगबन के पास गया या तो फिर परम पावन जी से भी मिले हो, तो मिलने के बाद उन्होंने कहा आपके आज्ञा अनुसार जो मन क्षेत्र के जितने भी आपके पहले इलाका था वो सब अभी हम लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो इसके बाद एक प्रकार से परम पावन जी बहुत खुश हो गए होंगे और उनके जितने भी मंत्री गण थे वो भी खुश हो गए होंगे। इसलिए उन्होंने मेरा लामा को कहा आज से जो है तवांग क्षेत्र के राजनीति का भार संभालने वाला सबसे मुख्य सबसे प्रधान जो होगा चीफ जो होगा आप होंगे और उसके साथ ही वहां पे तवांग क्षेत्र में जितने भी गेलुगपा मॉनेस्ट्री है उसका स्वामी आप होगा, उसके लामा आप होंगे। तो उस समय में मेरा लामा को तवांग के राजनीति और धर्म के सबसे बड़ा वाला व्यक्ति बनाया गया। इसके बाद उनके पक्ष में खड़ा होने वाला आदमी की जरूरत है तो इसके लिए फिर कहा जाता है कि गंदन फोडंग जो
परम पावन जी के जो गवर्नमेंट है उसका नाम है, वहां से फिर आदेश हुआ कि

तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण करूँ, मन में जाकर के तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण करूँ, और वहाँ पे आने वाले जितने भी भिक्षु होंगे आपके पक्ष में काम करेंगे वो। इसीलिए 1680 में मेरा लामा जी यहाँ पे आकर के परम पवन जी के आदेश अनुसार यहाँ पे एक मोनेस्ट्री का निर्माण करता है, जिसका नाम आगे चल करके तवांग गणतंत्र ये लज्जे हो गया है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से आकर देखेंगे तो फिर हम तिब्बतियों का शिष्य रहा है पहले से, खासकर हम परम पवन जी के शिष्य रहा है, पहला दलाई लामा से लेकर के आज तक के दलाई लामा सभी दलाई लामा। इसी प्रकार से अगर हमें दलाई लामा जी का मन क्षेत्र से कैसा संबंध है तो हम कहेंगे कि गुरु शिष्य का संबंध जो है पहला दलाई लामा से लेकर के सभी दलाई लामा के साथ में हमारा संबंध जो है बहुत ही पवित्र रहा है। एक भगत दलाई लामा के तवांग में आगमन के दौरान दलाई लामा जी ने कहा था, अभी मुझे स्थान याद नहीं है, उन्होंने कहा था सिक्स दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था क्योंकि पांचवें दलाई लामा जी के साथ में मन क्षेत्र का बहुत अच्छा संबंध था, और आठवें दलाई लामा जी का जन्म मंगल में हुआ क्योंकि सिक्स दलाई लामा के साथ में मंगल का संबंध अच्छा था। ये आशीर्वचन हम लोगों को

एक भगत दलाई लामा के तवांग में आगमन के दौरान दलाई लामा जी ने कहा था, अभी मुझे स्थान याद नहीं है, उन्होंने कहा था श्री दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था क्योंकि पांचवें दलाई लामा जी के साथ में मन क्षेत्र का बहुत अच्छा संबंध था, और आठवें दलाई लामा जी का जन्म मंगल में हुआ क्योंकि सिक्स दलाई लामा के साथ में मंगल का संबंध अच्छा था। ये आशीर्वाद हम लोगों को मिला है मन क्षेत्रों के लिए, तो ये इससे बढ़ करके हम लोगों के लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमेशा से हम तिब्बत और मन जो है गुरु शिष्य का संबंध रहा है इसके बीच में, खासकर दलाई लामा जी का हम शिष्य रहे हैं। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे या सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे, अभी मुझे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ते हुए तवांग मोनेस्ट्री का आज तक जो मन क्षेत्र के लिए क्या योगदान रहा है। तवांग मोनेस्ट्री बन जाने के बाद पांचवें दलाई लामा जी ने मेरा लामा को यहाँ के अध्ययन अध्यापन के लिए या यहाँ के कार्य के लिए जो भी आदेश दिया थे उसी अनुसार मेरा लामा ने तवांग मठ में चाहे त्रिपिटक के अध्ययन अध्यापन हो या त्रिशिक्षा के अनुपालन हो, इनके जो अध्यापन का नियम यहाँ पे बनाया, उसमें जो है बौद्ध धर्म के दो यानों में सूत्रयान और तंत्रयान में तंत्रयान को ज्यादा बल दिया गया। तंत्रयान के निचोर गुहे समुचे चक्र संवरा और यमंतका, इन तीनों की साधना यहाँ पे होती आ रही है हमेशा से, अभी भी चलता आया। और इसके बाद जो है उनको पांचवें दलाई लामा का जो आदेश हुआ था उसके आदेश अनुसार हमारे यहाँ पे अध्ययन अध्यापन जो अनुपालन है बौद्ध धर्म का उसी प्रकार से होता आया। आने के बाद जो है 1959 में जब पहुंचा 300 साल के पीछे के करीब, अभी तो मोनेस्ट्री के स्थापना हुए 340 साल से ज्यादा हो गया, 1680 में बनवाया गया था, तो फिर 1959 के दलाई लामा के भारत में आगमन से पहले तक तो उसी अध्यापन जो है ऐसा ही वहां पर होता हुआ। इसको लेकर के मन क्षेत्र में बहुत चर्चा भी हुई, तवांग मोनेस्ट्री के लोग तर्क वितर्क विद्या जो होता है जो उसको थिंग रिपा कहता है उसके बारे में क्यों नहीं करते हैं, ये सब बहुत हुए थे। लेकिन 59 के बाद में जब दलाई लामा यहाँ पे पधारने के बाद उन्होंने फिर से आदेश दिया तवांग मोनेस्ट्री से, कहा कि आपने पांचवें दलाई लामा ग्योंग लोसो जी के आदेश अनुसार जो भी अध्ययन अध्यापन का कार्य है वो सटीक रूप से निभाता आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे आप लोगों को बौद्ध धर्म के तांत्रिक ज्ञान की साधना पर ही जोड़ना दे करके सूत्र ज्ञान को भी देखना चाहिए जिसकी शुरुआत जो है तर्क वितर्क से होता है, संगीत रिक्पा से होता है। आपको भी आपने यहाँ पे महाशास्त्र पांच महाशास्त्र सूझे बोलेगा उनके विषय में भी आपको अध्ययन करना चाहिए, और इतना ही नहीं भिक्षुओं को केवल बौद्ध धर्म और शासन के बारे में ही जानकार नहीं बनना है, धर्मज्ञ नहीं बनना है, उनको आधुनिक शिक्षा विज्ञान है, आधुनिक भाषाएं है, आधुनिक भूगोलिक है, तो इन सब के विषय में भी आपको जानकारी हासिल करना है। और तीसरी बात, अभी हम लोगों को भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी आज से 10,000 साल पहले जो आज के युग में भी बहुत प्रासंगिक है, आवश्यकता है, आज बौद्धिक तौर पर हम बहुत विकास कर चुका है लेकिन मानसिक तौर पर हम बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मानसिक तौर पर हमको विकास करने के लिए बौद्ध धर्म को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है दर्शन जो है मठ पर सीमित न रख करके उसको बाहरी दुनिया तक लेकर के जाना है, ये आदेश हुआ था 1959 के बाद। परम पावन जी का आदेश हम वनवासियों के लिए, हम तवांग मठ के भिक्षुओं के लिए सर आंखों में होते हैं, उसके तुरंत बाद 1969 की बात है, उस समय तत्कालीन मठाधीश रिंपोचे पूर्व के रिगे रिंपोचे जी उनके दौरान भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि हमारे मठ में एक स्कूल का निर्माण करना है, विद्यालय का निर्माण करना है जिसके अंदर में बौद्ध दर्शन के साथ में आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी, और उस स्कूल के अंदर में केवल भिक्षु नहीं पढ़ेंगे बाहर के बच्चे भी पढ़ेंगे। 1977 में आते आते तब तक पूज्य रिगे रिंपोचे का स्वर्गवास हो चुका था, और पूज्य गेसे टुगु रिंपोचे तत्कालीन हमारे मठाधीश थे, तो उनके द्वारा स्कूल की शुरुआत हुई 1977 के बाद। इसके बाद से लेकर के आज तक जो है वहां पे बौद्ध परंपरा के साथ में आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, इसके फलस्वरूप आज तवांग के अंतर में बहुत सारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, गैर सरकारी स्कूल हैं, उसमें बौद्ध भाषा को पढ़ाने वाला या दूसरी लैंग्वेज को पढ़ाने वाला भी है, बौद्ध दर्शन को पढ़ाने वाला ज्यादातर टीचर जो है तवांग मठ के भिक्षु है या पहले भिक्षु थे या वहां के स्टूडेंट है, और उससे बढ़कर के बहुत सारे लोग जो है आचार्य पद पर भी बैठा हुआ है, प्रधान आचार्य के पद पर, हेड मास्टर के प्रिंसिपल्स के पद पर भी बैठा हुआ है, और आगे चल करके हम देखेंगे तो प्रमाण के तौर पर जो है बैठे हुए तवांग यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर हमारे यहाँ से हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे स्कूल में मठों में

0: हैं और हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे पूज्य रिमुचि जी भी तंग मठ से ही है और उनका पूर्व रिमुचि भी वहाँ के मठाशी रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम पूछेंगे तोंग मनस्वी का अब तक जो है वहाँ पे बैठकर खाने पीने के अलावा तोंग के लिए क्या लाभ हुआ है, तोंग के लिए क्या योगदान रहा है, तो ये सब योगदान रहा है। हमेशा से तोंग मनस्वी जो है शिक्षा का केंद्र रहा है। हमेशा से जो है तोंग मठ ने मन क्षेत्र के लिए सोचा और मन वासियों के लिए हमेशा अपने सर के ऊपरी भाग में पहला परम पावन दलाई लामा जी से लेकर 14 दलाई लामा जी के आदेशों को रखा, आगे भी करते रहेंगे। आज जो है दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, सब लोग जो है एक प्रकार से जल रही है दुनिया, लेकिन तोंग एक शांतिमय जीवन जी रहा है। किस लिए आए? हमारा मन साफ है, शांति है, इसलिए चमगो लामा त्सोंखापा ने एक श्लोक में कहा है, संभव संग न सदा लम्या संग संभ है न सदा लम्याजे संभव दल रे तकबर संभव बेगो रेस न। इस तरह से जिसका मन साफ होता है उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है, जिसका मन खराब होता है उसके लिए सब बुरा होता है। इसलिए हमेशा साफ मन रखो। और ये बौद्ध धर्म यहाँ पर अभी तक उसका अस्तित्व किससे बैठा? बाकी सब जगह में जो है बौद्ध धर्म छीन होता गया, खत्म होता गया, लेकिन तोंग में सटीक रूप से कैसे बैठा? अगर देखेंगे पूछेंगे तो फिर मुख्य रूप से तोंग मनस्ट्री से, तोंग मनस्ट्री की स्थापना हुई है उसके कारण हुआ है। और तोंग मनस्ट्री की स्थापना कौन किसने की है? पांचवें दलाई लामा जी ने किया है। और पांचवें दलाई लामा जी की कृपा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, पांचवें दलाई लामा जी हमारे यहाँ पे मेरा लामा कहते आ रहा है, लेकिन मेरा लामा जी ने पांचवें दलाई लामा जी की आदेश की स्थापना किया था। इसलिए मैं तोंग मनस्ट्री के निर्माता का श्रेय जो है परम पावन जी को देता हूँ। मैं दलाई लामा जी के दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए त्रिरत्न से प्रार्थना करते हुए अपने बात को यहाँ पे विराम देता हूँ।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना शास्त्री लोपसंग तंजाल से मन क्षेत्र और तिब्बत के ऐतिहासिक संबंध एवं तावंग मठ के महत्व पर एक वक्तव्य। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मानवीय पहलों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने द्वारका फेज वन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन किया। और अब समाचार।

लता मंगेशकर की आवाज में इस देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम को में तराने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय रात्रि के 8 बजे है, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो आइए कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत शुरू करते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गनेजा, पूनम गनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा तथा मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह से आए फरमाइशों के साथ, जो कि है आपकी कसम फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाजों में। गीत के बोल है आनंद बख्शी के और संगीत आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्रिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के फरमाइश पर चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के दूसरे नगमे का, जो कि है खानदान फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है नक्श लालपुरी ने और संगीत से सवारा है खयम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से, जो कि है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर के युगल स्वरों में। इस गीत को रचा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है आनंद मिलिंद ने, और इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है ततरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मानी वर्मा और नोखेलाल वर्मा से।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। चलिए इस शुरू की

0: बहार को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मेरठ कैंटोनमेंट के दिग्दर्शन गौर और कविता गौर तथा मालवा रेडियो लिसनर एसोसिएशन रतलाम मध्य प्रदेश के जगदीश ढाकर नेमा, मिसेस रंजू भाई ढाकर, युवा सिंह ढाकर और शिवांगी ढाकर के फरमाइश पर पुकार फिल्म से एक नगमा, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन ने, रचा है गुलशन भावरा ने और संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने।
1: देखो हाँ माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो।
2: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

श्रोताओं, पादमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के महल अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा, जो है अमर प्रेम फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज़ एट 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहे।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 में कई भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से शुरू। बीसीसीआई ने एशियन गेम्स के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान हरमनप्रीत को सौंपी। और रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट क्रोएशिया के जागरेब में कल से शुरू। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम

0: 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मोरक्को ने मोंटेरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। 1-1 से बराबरी के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की। 72वें मिनट में कोडी गैपको ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई। क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ बैलेंस टचबैक ने गैपको को गोल करने में मदद की। गैपको अब विश्व कप में नीदरलैंड के लिए 6 गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह सिर्फ जॉनी रेप से पीछे हैं, जिन्होंने कुल 7 गोल किए थे। मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की। सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में स्थानापन जेम्स डाइन टेल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया। मोंटेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया। पेनल्टी किक के दौरान दोनों देशों ने अपनी पहली 2 कोशिशों में से 1 में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए। यासीन बोनू ने क्राइसेंसियो समरविले का शॉट बचाया और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल करी। यासीन बोनू ने शूटआउट में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं एक अन्य राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में पैराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को पराजित किया। पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर यह कारनामा किया। बोस्टन स्टेडियम में खेला गया मुकाबला निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। फीफा विश्व कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था। इस बार भी टीम ने आखिरी तक संघर्ष किया। अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नोयर ने शानदार बचाव कर जर्मनी की उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन आखिरकार पराग्वे ने अपने तीसरे निर्णायक मौके का फायदा उठाकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच के 42वें मिनट में जूलियो एंसेसो ने गोल करके पराग्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में फ्लोरियन विटर्स के क्रॉस पर काई हेवटर्स ने हेडर से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद जोनाथन टाह ने भी हेडर से गोल किया, लेकिन उसे अमान्य करार दे दिया गया। तय समय तक कोई और गोल नहीं हुआ, इसलिए मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। शूटआउट की शुरुआत जर्मनी ने की, लेकिन कोई हेवर्ट्स की पहली पेनल्टी पर पराग्वे के गोलकीपर के हाथों बचाव किया गया। इसके बाद मॉरिसियो ने गोल कर पराग्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि जोशुआ किमिख ने अगली पेनल्टी पर गोल करके जर्मनी की वापसी कराई। इसके बाद गुस्तावो गोमेज ने गोल कर पराग्वे को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन जमाल मुसियाला ने शानदार शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। रोमांच तब और बढ़ गया जब मटियास गोलार्जा ने गोल करके पराग्वे को जीत के करीब पहुंचा दिया, जबकि जर्मनी के लिए निक वोल्टमेट का अगला प्रयास रोक दिया गया।
2: Surely this time for Paraguay, he does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history. Germany are leaving a World Cup.
1: उधर 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने भी जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद कासेमिरो और गैब्रियल मार्टिनेली के गोलों की बदौलत ब्राजील ने आखिरी मिनटों में यादगार जीत दर्ज की।
2: Belongs to Brazil. Brazil march on to the round of 16.
1: Nishesh Shukla, SportsScan.
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप में हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और हर मुकाबला एक नई दास्तां लिख रहा है। और अब रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में इस वक्त एलिना रिबाकिना का मुकाबला लोइस बॉयसन से जारी है। वहीं पुरुष सिंगल्स में जे मेंसिक और टी सैमुअल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं कल यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
3: पुरुष सिंगल्स के पहले चरण में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 3.5 घंटे तक चले मुकाबले में मियोमिर कैकमेनोविच को 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 से हराया। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में सिनर ने कई गलतियों के बावजूद मुकाबला अपने नाम किया। कैकमेनोविच ने तीसरे सेट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अहम पॉइंट्स हासिल किए। अनफोर्स्ड एरर को कम करके

निर्णायक सेट तक पहुंचने के बाद सिनर ने मैच पर पकड़ बनाई और जीत हासिल की। दूसरे राउंड में सिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस से होगा। सिनर ने इस जीत के साथ ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में 94 मैच जीत लिए हैं। उन्होंने इटली के खिलाड़ियों में निकोला पियत्रांगेली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं 3 घंटे और 11 मिनट तक चले एक और रोमांचक मुकाबले में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अपने 21वें विंबलडन अभियान की शुरुआत चीन के येबुंग वू को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हरा कर की। पहले सेट में दुनिया के 102वें नंबर के चीनी खिलाड़ी ने 15 विनर्स लगाए, हालांकि

0: 21वें विंबलडन अभियान की शुरुआत चीन के येबुंग वू को 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हराकर की। पहले सेट में दुनिया के 102वें नंबर के चीनी खिलाड़ी ने 15 विनर्स लगाए, हालांकि उतनी ही संख्या में अनफोर्स्ड गलतियां भी की। इस साल केवल 5 टूर्नामेंट खेलने वाले जोकोविच ने तीसरे सेट के अंत में पूरी ताकत झोंक कर वू की सर्विस ब्रेक की। जोकोविच ने संघर्ष करते हुए तीसरा सेट अपने नाम किया और फिर चौथे सेट में अहम मौकों पर पूरी तरह नियंत्रण बनाकर विंबलडन के पहले दौर में अपना रिकॉर्ड 21-0 कर लिया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कर लेते हैं कुश्ती एशियन चैंपियनशिप पर। थाईलैंड के पटाया में एशियन अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक के साथ कुल 21 पदक जीते। वहीं अंडर 20 के अलग अलग वर्ग में नीरज पटेल, आर्यन मलिक, विकास और दिशांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 15 फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही। भारतीय लड़कों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। 52 किलो में प्रथमेश सूर्यकांत पाटिल, 62 किलो में नैतिक, 75 किलो में हर्षद केशव और 85 किलो में विवेक चौहान ने स्वर्ण पदक जीते। नीतीश ने 57 किलो में एकमात्र रजत पदक अपने नाम किया। 41 किलो में गौतम, 44 किलो में अहलावत वंश और 68 किलो में अरमान ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं ग्रीको रोमन में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही। 62 किलो में दर्पण राजू चौधरी ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 48 किलो में यश, 75 किलो में गौरव पाटिल, 85 किलो में जतिन ने रजत हासिल किए। एकमात्र कांस्य पदक 57 किलो में धौनचक ने जीता। प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिला कुश्ती टीम ने शानदार प्रदर्शन कर दूसरा स्थान हासिल किया। 33 किलो में समृद्धि पाटिल, 46 किलो में विनाक्षी और 66 किलो में दिशा ने स्वर्ण पदक जीता। दिव्या रानी ने 36 किलो में और ध्यानेश्वरी ने 42 किलो में रजत पदक जीता। निशा ने 54 किलो, दीपांशी ने 58 किलो, अंजलि ने 62 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल चेस्टरले स्ट्रीट में खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम हाल ही में आयरलैंड से मिली हार के बाद नई शुरुआत की तलाश करेगी। वहीं इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान पर दावेदारी पेश करना चाहेगा। इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के विरुद्ध T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। इस बीच एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई ने आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। ये प्रतियोगिता जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
3: एशियाई खेलों 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया उतरेगी। भारत ने इससे पहले चीन के होंगजाऊ में हुए एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। टीम की बात करें तो उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिगेस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगी। स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी को मजबूती देंगी। विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष और कामलिनी को टीम में जगह नहीं मिली है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्विंग स्पेशलिस्ट रेणुका सिंह ठाकुर और अनुभवी अरुंधति रेड्डी के कंधे पर होगी। राधा यादव और श्रेयंका पाटिल स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को छकाएंगी। श्रेयंका चोट के कारण T20 विश्व कप से बाहर हो गई थी। यस्तिका भाटिया जो विश्व कप टीम का हिस्सा थी उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। अमीशा, स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं आईसीसी ने महिला T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। श्री चरणी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है। वहीं बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जॉर्जिया वोल पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाए रखी है। और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज बेल्जियम के आगामी एक्सपोजर टूर के लिए 22 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर 5 से 18 जुलाई के बीच खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: इस एक्सपोजर हॉकी टूर के दौरान युवा भारतीय टीम यूरोप की मजबूत टीमों का सामना करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ 2-2 मैच, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी। इस एक्सपोजर टूर से टीम को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले उन्हें अपने कॉम्बिनेशन और खेलने के तरीके को परखने में मदद मिलेगी। इस टूर के लिए डिफेंडर अनमोल इक्का को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। गोलकीपिंग

0: में विवेक लाकरा और कुणाल तेवतिया शामिल हैं। डिफेंस लाइन में कप्तान अनमोल इक्का, रोहित कुल्लू, चिराग रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की और वी मणिमारन शामिल हैं। मिडफील्ड की जिम्मेदारी अद्रोहित इक्का, हरपाल, जीत पाल, मुकेश टोपो, मन्नू मलिक और ऋतिक लाकरा संभालेंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव, रवदीप सिंह, अर्जुन हरगुड़े, आर्यन जेस, लवनूर सिंह, कोनैन और गुरुसेवक सिंह शामिल हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को फिर से बेल्जियम और 17 जुलाई को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलकर दौरे का समापन करेगी। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात शतरंज पर। क्रोएशिया के जागरेब में कल से रैपिड एंड ब्लिट शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। गुकेश और प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है, जो शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच है। ग्रैंड शतरंज टूर के अंतर्गत इस साल की ये तीसरी प्रतियोगिता होगी और इसके बाद 3 और प्रतियोगिताएं होनी है। इस प्रतियोगिता में रैपिड शतरंज के 9 दौर जबकि ब्लिट शतरंज के 18 दौर खेले जाएंगे। रैपिड में हर जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि ब्लिट्स में जीत के लिए 1 अंक और ड्रॉ के लिए आधा अंक दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तरोव, सर्बिया के इवान सारिक और रोमानिया के डीएक बोगदान डैनियल भी प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। और अब बात बैडमिंटन पर। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने आज अगले 2 विश्व के विश्व टूर कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट फरवरी 2027 और जनवरी 2028 में खेला जाएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 27 जुलाई से 1 अगस्त 2027 के बीच लखनऊ में होगा, वहीं 2028 में 25 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
3: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण

0: और मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा

0: अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रूपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural

0: consistent with international law, including the Charter of the United Nations. On to sports. In the FIFA World Cup, Morocco and Paraguay have advanced to the round of 16. Morocco defeated Netherlands 3-2 on penalties after the thrilling 1-1 draw in Guadalupe, Mexico. Germany suffered a stunning exit after losing 3-4 to Paraguay in a penalty shootout in Boston, USA, following a 1-1 draw. Brazil has also secured their place in the round of 16 with a 2-1 victory over Japan in Houston, USA, late last night. Tonight, Ivory Coast will take on Norway in Texas, United States. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. In another encounter, France will take on Sweden late tonight. The match is scheduled to kick off at 2:30 a.m. IST. The Board of Control for Cricket in India has announced a 15-member women's squad for the Asian Games 2026, which will be held in Aichi, Nagoya, Japan, later this year. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living, also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। श्रोताओं, कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम नंग छोए कलोप कल शाम 5:35 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी तथा आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8 बजे। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगे छोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री राम सिंह, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी हिंदी उद्घोषिका गेंदन लामू को दीजिए इजाजत। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, शुभ रात्रि। जय हिंद।